जी हाँ ये जिंदुआ गीत फिल्म दमदम मस्त कलंदर विच साढ़े दिलों के नेड़े इस करके है कि फिल्म साढ़े आस्ट्रेलिया शहर की है तो फिल्म साड़ी जिंदगी साड़ी होनी बहुत नेड़े होकर वेखती है फिल्म उ कहानी है कि असी प्रदेश चो वापस जाना चाहते हैं छला वापस तो जाता पर छला मुड़ के उत्थे रहा नहीं छले का जी नहीं लगता बस साड़ी जिंदगी इन्ना पड़ावों के निकलती हुई एक थान तो दूजी थान पर चलती है दूजे बन्ने जो तुम खबर वाल झाती मारते हो तो उत्थे साढ़े सामने ये तरीका भी आता कि माइग्रेशन कट कर नीति आनी चाहिए सब तो व्डा चर्चा का विषय वन नेशन पार्टी वालों माइग्रेशन नीतियां लैके गलत आँदी है दूजे पास एक सिक्के का मैं कई गल् वह करता हाँ जीडिया साढ़े जहन के ने कि आते जाते सानू उन्हों गल का जिक्र कित भुल जाता है कित रह जाने बनौटी बुद्धि के जमाने के बहुत सारिया गल् डाटा सेंटर लैके हुई डाटा सेंटर का विरोध होया पर अजोके युग में आर्टिफिशल इंटैलीजेंसी के नाल नाल मशीनी बंदे भी साढ़े सामने आने लग पे जी हाँ और रोबोट टैक्नोलॉजी रोबोट तकनीका प्रवास को रोकने का कारण कित यह नहीं कि हूँ आस्ट्रेलिया के नीतियों के लगता कि सानू बंद की लड़ नहीं रोबोट चाहिए ने सानू बंद रोबोट बनाओ उन्हों मशीनों इतने चलाओ सस्ती लेबर जी प्रवास लैके आँदी आनू कट करो तो बंद राही मशीन का काम करके इनू दूजे मुल्कों में भेजो ये एक नव तरक्की का मॉडल आ जोड़ा अगले चार पाँच साल स्पष्ट तो साफ हो जाएगा पर इनी गल स्पष्ट आ कि प्रवास की नीति ना पूरी दुनिया के कितना कित असर तो पैना आ पर बंद की लौड़ हमेशा ही रहेगी मशीन धरती खाना नहीं देनगिया मशीन चीज़ा वह बनागियाँ जड़िया मशीन वरतन ज मशीन चीज़ा वह बनागियाँ जो बंदे वरतन जे मशीन चीज़ा बनागियाँ तो उन्होंने बंद वरतन जगह भी चाहिए है बंदे भी चाहिए ने हाँ इंसान की रोल बदल जाएगा साडा थान टिकाणा बदल जाएगा साढ़े काम करने के तरीके बदल जाएंगे इस गल की जड़ी कहानी है वो साढ़े सामने नज़र आएगी कला जो गल प्रोग्राम दे वेच जे असी सियासत की गल कर रहे हैं तो सियासत दे रंगो नग खाने पचाने का भी एक जमाना शुरू हो गया लोग खास प्रौणियां दे सद्दे ते खाने ते जांदे ने सरकारां अपने ढंग प्रचार दे लई एक ढंग तरीका नीति शुरू कर दियां ने असी वड्डे वड्डे बंदियां कोल बह के उन्हां संग बह के अपने आप नूं वड्डे होण दा भरम पालदे आ सरकारां इह भरम पालदियां ने कि असी लोकां नूं खुश करता पर लोग अपनियां वोटां अपना जमाना अपना सारा कुछ किन्हां नूं पाउणगे वो उस गल ते डिपेंड करता कि सानू खाण नूं रोटी की है सस्ता की है तो कि महंगाई तक अग पाउंदी है काबू पाउंदे आ महंगाई की अग सानू दिनों दिन ख लुसन फिरदी है पर असी उत्ते काबू किदा पाउने आ जे महंगाई की गल नहीं हुंदी उहदे नाल ते फिर हुण आरनेट वी फिकर पिया आ क्योंकि आरनेट ये कहिंदा भी तू गड्डी तेल वाली लैनी है गड्डियां भावें बिजली वाली आ गई पर आरनेट का ध्यान अजे तेल वाली है जी हाँ एक होर गीत किलोमीटर फिर गल अगे करते हैं